लिए मैं राम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

और परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद फिल्म ग्राम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं फिल्म के नाम है कुर्बानी। ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

और हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे कि कैसे। ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपरहिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

0: समझ के भी।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से।
2: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।

और आकर यो दोस्तों, मैं फिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त, हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो आओ सुना जाए, मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ। फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

भी दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रीमनी इनके बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के और, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील आवली ची फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

तो पूछे कौन है और बता दीजिए ना नाइटगेल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफिका, ये गाया हुआ सॉन्ग है और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं, प्यार भी हमारे

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से, ये है ये कुछ और फिल्म का नाम है, तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करे, मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी या लूट से भैया क्या क्या होता है।

शाबुस ले जी। और इस गीत पे एक्ट की है रजेश खन्ना और हेलन जी। फिल्म का नाम द ट्रेन 1987 तक में पिक्चराइज किया गया है। गीत का बोल आप जरूर सुनते रहना।

महबूबा महबूबा, फिल्म शोले से हमने यहाँ से श्रवण की है। कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते मेरे दोस्त, कि कुछ चेहरे भुलाए नहीं जाते, कुछ नाम दिल

कहते हैं ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लाइन है, आप जरूर सुने, इसे पसंद करेंगे, कि कभी तो की होगी सूरज ने, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत। सुनिए जी, कभी तो की होगी सूरज ने चांद से मोहब्बत, तभी तो चांद में दा

सूरज में आग है। ये लाइन भी आप सुने, इसे आप भी खुश हो जाएंगे कि दिल में रह कर, कि दिल में रह कर दिल पर वार करते हो।

साधु और शैतान। फिल्म साधु और शैतान से सुने हमने ये सुंदर सा गीत महमूद के एक्ट की हुई है। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, सुनिए तो जी कि आंसू

कर सुझा लेना। बाद में मौका मिले या ना मिले, बस दिल पे ना लगा लेना, दिल पे ना लगा लेना। यहाँ से आपके लिए चुन कर रखी हूँ और आपको लेकर चलते हैं आशा भोसले जी की आवाज़ में, रातों का राजा फिल्म से निकालेंगे।

तुम्हारे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

सिर्फ तुम, सिर्फ तुम फिल्म का नाम। जी हाँ, सिर्फ तुम फिल्म का नाम। और अलका याग्निक जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है ये सुंदर सा गीत, आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। छोड़ दो सब गम और शिकवे, छोड़ दो सब गम और शिकवे, हाँ बदलने पर तो मौसम भी सुहाना लगने लगता है। आप क्या समझे?

इस बार शामिल किया गया है कुमार शानू और साथ दे रही थी अलका याग्निक जी। Alleen, alleen een kalme geest kan oplossingen vinden. आपने ठीक सुना, alleen ठंडे दिमाग वाला इंसान वही

एक बार फिर शामिल किया गया है अभिजीत भट्टाचार्य के इस प्रोग्राम में। शोहरत, शोहरत का पैमाना, शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता है मेरे यारो। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिल पर राज करे वो भी मशहूर।

यस यस यस माय लिसनर, जी हाँ आपने ठीक सुना कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ हाँ मौसम है दस्तूर है, तो जरूर से कंवरियां लोग के दिल मचलेगा। संदेश संदेश शिव दीन जी की आवाज में यहाँ से शामिल कर दिया गया है आज के प्रोग्राम में।

ये स्पेशल गीत आपके लिए पेश किया जाता है, स्पेशल स्पेशल चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों।

इस बार आपके लिए हम सुनेंगे, मिलकर सुनेंगे कि जिंदगी की न टूटे लड़ी। इससे पहले हम यहाँ सुनेंगे ये सुंदर सा गीत, वो सुंदर सा गीत हम अभी के आपके लिए चलाएंगे।

आशिक बनाया आपने, आशिक बनाया आपने, वही उसी मूवी से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है। कितना अकेला हो जाता है वो शख्स, कितना अकेला हो जाता है वो शख्स, जिसे जानते तो बहुत लोग हैं मगर समझते कोई नहीं। चुप रहना मेरी ताकत है, चुप रहना मेरी ताकत है, खामोशी नहीं। चुप रहना मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। अकेले अकेले रहना मेरी आदत है, मजबूरी।

फिल्म क्रांति के ये गीत है मेरे प्यारे सुनने वालों, और नितिन मुकेश जी ने ये गीत को गाया है। और यहाँ पर हमने सुने हैं, हमने सुने हैं शशि सुखा आका बिगामान की आवाज में। कुछ अपना अंदाज, कुछ मौसम का अंदाज रंगीन है, कुछ अपना अंदाज, कुछ मौसम का अंदाज रंगीन है। तारीफ करूं या चुप रहूं, जुर्म जुर्म दोनों ही संगीन है।

दोस्तों, कहे गए हैं कि अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। ये कह रहा है श्री कृष्ण अर्जुन से, तो मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया, आगे सुनिए। तो जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मित्रों, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सन्मुख प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया, आगे सुनिए।

मित्रों, परमात्मा आगे कहते हैं कि मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तो मित्रों, भगवान आपको शायद पता नहीं है, मगर पता होगा जिसको, तो वो आपको बतला सकते हैं। और हम तो जानते हैं भगवान प्रतिदिन हर इंसान को कोई ना कोई रूप में दर्शन देता ही रहता है, मगर हम जान नहीं पा रहे हैं ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी से प्रेम से रहो, किसी को गालियां देख के मत जलो, वगैरह वगैरह, क्योंकि ना जाने किस रूप में मैं वहाँ पर प्रकट हूँ। मित्रों, तो मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। समझो कुछ हो, तो जो मेरा चिंतन करता है, कह रहे भगवान, फिर उसका मैं चिंतन करता हूँ, और जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। वाह, क्या है मेरी परमात्मा। और जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। मित्रों, कितनी सुंदर बात परमात्मा ने कहा है, मगर हम तो विश्वास ही नहीं करते ना। विश्वास करो, भगवान झूठ नहीं बोलत है। जब इस बात उसने कहा है तो करेगा भी ना, मगर तुम्हारे अंदर घुसे तब तो, मित्रों, तब तो।

यदि सच्चे भाव से यदि मेरा भजन करते हैं, भजन करते हैं भजन, तो भी मैं उनके उसी कामना को पूर्ण करता हूँ। मित्रों, भगवान ये बात बोलता है, तो जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। मित्रों, इसीलिए संसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने का इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। अन्य देवताओं को, मित्रों तो ये बात समझो और आगे बढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति।

जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है मित्रों। और जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है मित्रों, कृष्ण ये बात बोलता है। तो ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मित्रों, ऐसे भगवान बोलता है। तो मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, ये अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण भगवान। और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान, भूत मतलब ना जुम्बी योरकाने, भूत मतलब फरलेदन तैत। तो मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है मित्रों। नोस मनो साहब मी, कृष्ण बोले अर्जुन से, मगर मी साहब इधर ही। भाई बहनों, समझने की जरूर कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात कृष्ण बोला रहा है।

प्रिय भाई बहनों, आगे कहते हैं, समझदार व्यक्ति ध्यान करना। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना प्रसन्न करता है। मित्रों, तो जब आपके घन एक गहरा मित्र जो है आपसे रिश्ता बंद करे, कमती कर दे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ी भाई ले मित्रों। और कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न सही समय, न सही लोग और न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद बदलना होगा मित्रों, और खुद ही आगे बढ़ना होगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये बात समझ आएगी, खोपड़िया में बैठ गए, उस दिन से तुम्हारी ताकत किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम अफांकलक दूसरों को नहीं रहोगे मित्रों। ये सही बात है, ये याद कर लेना। अपने बलबूते पे सब कुछ कोशिश करो करने को मित्रों।

दोस्तों, भगवान कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाओ, जैसे आप बार बार करते हो। हर कोई के दिल दुखा देते हो, बड़ा बात, बड़ी बड़ी बात, वो बिगिता की देख कर कुछ ना कुछ। नहीं, आप नहीं करते हो, बहुत ठीक बात है, मत करना। ना अंदर हैप्पी एम प्रॉब्लम यो किसमा बिगी प्रॉब्लम। तो कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी की टूट, ध्यान करना, किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। बाप रे बाप। क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता है, अपन प्रॉब्लम इंसान से नहीं कहता है, और वही चुपचाप ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही आंसू मित्रों, वही आंसू के न्याय का हत्या बन जाता है, वही आंसू का हत्या हो जाता है। भगवान ये सब चीज ना फरदराह करे है, तो खबरदार खबरदार मित्रों, लुगबू अनहैप्पी।

0: रहती है।
1: कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वास्तव में हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप कटते

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर एक के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। बोल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुने हैं, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवा। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें ऐप द्वारा। सबको हमारा राम राम नमस्कार, अदाए बरसो, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे ढेर सारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। जहाँ जहाँ पे दुख है, जहाँ जहाँ पे दुख है सुख है, हम पूरा टीम आपके साथ है। देखा जाए तो आज मंगलवार है, देश दाह घड़ी की तरफ देखा जाए क्वाट ओवर आक्त हो चुका है, 520 अगस्त हो चुका है, 2026 में हम चल चुके। हमारे सुनने वालों, आप सब चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से, आप सब चुने, मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो अब से लेकर 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे। आज का दिन जैसे मैं प्रोग्राम को बनाया है, वैसे हम आप लोग को प्रोग्राम को सुनाएंगे। हम कुछ भजन न्यू स्टाइल भजन में आप लोग के ले जाएंगे, न्यू स्टाइल भजन है। और देखा जाए गणेशा का एक भजन मैंने रखा है, न्यू स्टाइल में आएगा, हम सब उसे सुनेंगे और देखेंगे। कुछ रेगे म्यूजिक है, 2026 में इस म्यूजिक को बनाया गया है और गाया भी गया है, और हम आप लोग के सुनाने वाला है। हम सब मिल के सुनेंगे रेगे स्टाइल में, एक बहुत ही अच्छा भजन है गणेशा की।

जी हाँ दोस्तों, जय गणेश देवा। अभी आप सुन रहे थे गणेशा की एक न्यू स्टाइल में एक भजन थे जो अभी मैंने आप लोग को सुनाया है। मैंने प्रोग्राम को बनाया है, आप सब जानते हैं हमारा प्रोग्राम में आज भजन चलेगा, कुछ हिले मिले जुलेगी चलेगी, सवाल और जवाब भी है प्रोग्राम, सवाल भी जवाब भी चलेंगे। ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम को बनाया है, जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा घंटे जाएगा वैसे वैसे हम आप लोग के बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे चलने वाला है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, ढेर सारा पैगाम पहुँचे। नम सही लतीम फन फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, सभी को एक शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। देखा जाए मंगलवार हो चुका है, 25 तारीख हो गई है दोस्तों, और 3-4 हालफ नहीं का हो चुका है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, कुछ भजने हम आप लोग को सुनाएंगे। हम आप लोग के लिए चलते हैं भजन शिव का, शिव जी का भजन, शिव भगवान का भजन है। जो भी इस वक्त पूजा पे है या अपना फूल को चढ़ाते हर एक के लिए ये भजन मैं सुनाता हूँ, और भगवान हर एक की पूजा पूरा करे। तदुस्ती दे मालिक, जहाँ पे दुख है उसे उसे सहन शक्ति दे अपना दुख को सहने के लिए, जहाँ पे सुख है उसे सुख में भी उसका साथ है।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं दुनिया का मैं टुकड़ाया हूँ, बस मेरा हाथ पकड़ ले बाबा। कहता है शिवा से, कहते हैं मेरा हाथ को पकड़ लेना। इतना शुभ ऐसे ऐसे भजन सुनने के लिए मिलते हैं, वाह जी खुश हो जाते हैं। मन में अगर कुछ गलत है तक मन भी साफ हो जाते हैं दोस्तों। मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ। सुबह सुबह जो अपना पूजा पे ध्यान देते हैं बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात और कुछ दुनिया में नहीं है। चलो आप ले चलते हैं, कृष्णा के एक भजन सुनाते हैं रेग स्टाइल में।

जी हाँ दोस्तों, ये सब भजन जो बनाया गया है ये सब मॉरीशस का है, आप खुद ही सुन रहे हैं, मॉरीशस का नाम आ रहा है, यहाँ भी लिखा है कि मॉरीशस का भजन है, मिक्स है, और क्या भजन है, अंदाज है, नया अंदाज में अच्छे अच्छे भजन है दोस्तों। ठीक है, हमें चलते आप लोग के देखा जाए शिवा का एक और अंदाज में है।

जी हाँ दोस्तों, कैसे भूल जाऊं भगवान को, यही कहते हैं कि भूल मत जाना, सदा याद रखना भगवान को, उसी में चैन है। जितने ही याद करना उतने ही चैन मिलेंगे। जहाँ पे दुख है, जहाँ पे मातम है, हर एक दुख में हम सब साथ हैं। शिवा उसको इतना सहन शक्ति दे अपना हर एक दुख को सहने के लिए। यही मैं आप लोग के कह सकता हूँ, पूरा टीम फाउन के हमारे जितना को लेखा है सभी यही कहते हैं, हर एक घर में खुशियाँ ला दे मालिक, हर एक दुख को दूर कर दिया जाए और सब घर में चैन सुख दुख निकाल दे भगवान। सुबह का है, आज मंगलवार है, सुबह हो चुका है, मौसम कितना बढ़िया मौसम है, हर एक जो अपना पूजा पे है उसका पूजा स्वीकार कर लिया जाए मालिक। ठीक है, हम आगे चलते हैं। एक शिवा शक्ति देखा जाए तो एक नया स्टाइल में है, मॉरिशियस स्टाइल में है।

जी हाँ दोस्तों, शिव मेरा पूजा, अभी आप सुन रहे थे शिव जी का एक भजन। ठीक है दोस्तों, हम आखिरी भजन को चलाएंगे, उसके बाद हम कुछ हिले मिले जुले गीत आप लोग की सुनाऊंगा।

जी हाँ दोस्तों, कुछ साईं बाबा का न्यू सिस्टम में था। मॉरिशस का ये जो गाया हुआ भजन है कि अंदाज में गाया है, रिमिक्स में गाया है, और ये सब मॉरिशस का है। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताना चाहता है मेरा प्रोग्राम क्या है। अब मैं कुछ फिल्मी गाने आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, जैसे हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ फिल्मी गाना सुनाऊंगा। उसके बाद सवाल और जवाब चलेगा, सवाल और जवाब चलते रहेगा। हम एक सवाल किया था, एक बार फिर से करूंगा, जो सही जवाब देगा और गाने को मांग करेगा, हम गाने ज़रूर सुनाएंगे। आज 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे, और इसलिए मैं कुछ और थोड़ा सा मकलक कर दे लो, सवाल पे जवाब दिए तो खल एक गाना आपके लिए चला दूंगा। जी दोस्तों, मेरा सवाल था वट इज स्वार्डर दैन एन हाथी, एगो हाथी से स्वार्डर और कौन सी हैगा। एक अंतर दे दिए तो तू गाना तो के माखेगो हमसे मांगे के। तब तक के लिए दोस्तों हम चलेंगे आज, और आप लोग के बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम करते ही दिनहा शहर से, जहाँ पे ये सरसराहत हवा चल रहा है, मौसम निकसल है, लव बोट ठड़ा है यहाँ पे बगल में, अभी कुछ खाना होना पकेगा। तब तक के लिए तो हम ले चलते हैं फिल्म गुदाई, एक गाना भमन देख कर लिए बाटी, बहुत मई गाना है। फिल्म गुदाई नहीं तीन फिर नहीं तक में बनल बा, म्यूजिक बजाई से जगजीत सिंह, गाने वाला है कुमार शानू। किस मौसम में इसमें काम किया है रजेश खन्ना ने, हम आप लोग सुनाना चाहते हैं कि ये गाना में कितना दर्द है, और ये गाना सो उमर न गवाने, ये गाना के बारे में अगर आप जाएंगे गूगल पे तो सब चीज़ पढ़ सके है कि कह कती गाना कुमार शानू का, ऐसे रही दे कुंजीबा गनवा के गावत, और कैसे ये गनवा कुमार शानू का ऐसे

जी हाँ दोस्तों, किस मौसम में यार अब तूने ये दिल तोड़ा। फिल्म गुदाई नेगन 3 फिर नेगन तक गाना है दोस्तों। अगर आपको जानना चाहते हैं, इसमें एक रस है जानने के लिए कि क्यों, किस लिए कुमार शानू ने इस गाने को गाया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं नेगन 3 सेफ एंड थिंक में, हमने जाए लो जहाँ पे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाना को गाया है, और हम के मिल के सुनते हैं मैं नदिया की धारा।

जी हाँ दोस्तों, मूवी नाग पंचमी देखा जाए, इसका जो म्यूजिक बजाया गया है रवि और लाइरिक्स है इंदिवर, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इसमें काम किया है पृथ्वीराज और जयाश्री। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलते हैं, कुछ ऐसे गाने मैंने सोचा है, देखा है और अच्छी अच्छी गाना है, बहुत ही पुराना गाना है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के, जिसपे फिरोज खान काम किया है, चित्रगुप्त म्यूजिक को बजाया है, मजरूत सुल्तानपुरी का लायरिक्स है और मूवी का नाम है ऊंचे लोक, निकतिन फैफन सस्तक का है, जाग दिल ए दीवाने, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, जा गए दिल दीवाना। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज अभी आप सुन रहे थे मूवी ऊंचे लोग, देखने थी फैफन सस्त का है। फिरोज खान इसमें काम किया है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज, चित्रगुप्त का म्यूजिक और मजूद सुल्तानपुरी का ये लिरिक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं तो हम कुछ बंधन में बन चुके हैं। ऐसा बंधन है भाई बहन का बंधन है, जो रक्षाबंधन है दोंदरदाह के आने वाला बिफे के रक्षाबंधन है। दोस्तों जहां भी भाई बहन है, जितना दूर भी है, उस दिन ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए और रक्षाबंधन को बहानिए बनवाइए। जितना ही प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, रक्षाबंधन को बनवाइए। इसलिए मैं एक गाना रक्षाबंधन के भी ढूंढ के रखा हूँ, खोज के रखा हूँ। मूवी रेशम की डोरी का है, नई कंदीन फिरन सैफन तक का है और हम सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे। क्या क्या मस्त गाना है, भाई बहन का नाता है। हर एक बहन हर एक भाई जो इस दुनिया में है, आपस में ज़रूर मिलेगा। और ये आपस वाला गाना है, रक्षाबंधन का गाना है।

हमेशा की तरह बिफे के भी बहना भैया के कलाई पे रक्षाबंधन बहाना जाएगा। जेबी थाम के रखना, अपना दीदी को खुश रखना, हर एक बहन को खुश रखना। और रक्षाबंधन आ गया है, द्वंद्व राख की रक्षाबंधन है हमारे सुनने वालों। और हर एक बहन और भाई का नाता रक्षाबंधन से बनता है और सदा बना रहेगा, क्योंकि रेशम की डोरी से, भी आपने सुनी है, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, भाई की कलाई पे बस राखी बांधा है। ठीक है दोस्तों, हम ले चलते हैं। झूठा सावन देखो आया, झूठा सावन देखो आया है। दो खिलाड़ी नेकन तीन सेशन से इवन तक का है, सिंगर है पद्मश्री मोहम्मद रफी, म्यूजिक है उषा खन्ना। और आप लोग के सुनाते हैं क्या गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है।

जी हाँ दोस्तों, बरखा ने प्यार बरसाया कहते हैं, झूम का सावन देखो बरखा ने प्यार बरसाया। लेकिन आज का मौसम तो बहुत घाम है यार, इसलिए घाम ने प्यार बरसाया। दो खिलाड़ी निकल जी ससन सैफ तक आए, सिंगर पद्मश्री मोहम्मद रफी उषा खन्ना का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा फिल्म को मैंने रखा है, होली आई रे निकंतीन सैफन तक का है, जिस सिंगर है किशोर कुमार, प्रकाश तपा और माला सिन्हा ने इसमें काम किया है। कल्याण जानन जी का म्यूजिक है और उमार जालाबादी का लाइरिक्स है। कॉमेडी है, थोड़ा कॉमेडियन गाना है दोस्तों। आज मंगलवार है, बढ़िया वेर है, अच्छा सवेर है, मौसम है, सरसराहट हवा चल रहा है और देखा जाए क्वार्टर फॉर तीन हो चुका है। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेंगे दोस्तों। और जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब अगर आप देते तो गाना को मांग सकते हैं, आज नहीं तो फ्राइडे के आगे हम चलेंगे। What is smarter than an elephant? Ego हाथी

जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी नंबर था होली आई रे निकंतिन सैफन तक का ये गाना था। चलो दोस्तों, चलिया बाबू हम ले चलते हैं निकंतिन सैफन तक में, जिसमें रेस करना सीना तमन ने काम किया है, किशोर कुमार की आवाज़ है, और देखा जाए हाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लाइरिक्स भी है।

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे न्यूज और रेखलाम। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते हैं नेखन तीन दरियन ताख्तक में। देखा जाए मूवी महान, प्यार में दिल पे मार दे गोली, अमिताभ बच्चन, जीना तमन, किशोर कुमार, आशा भोसले का आवाज है, एयर दे बेरमन का म्यूजिक है। हम आप लोग सुनाते हैं

जी हाँ दोस्तों, प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ली मेरी जान, मूवी महान नेखन तीन त्रियन तख्त का अमिताभ बच्चन, जीना तमन, किशोर कुमार, आशा भोसले का वास, एर देवी बर्मन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, चलो हम आप लोग के लिए चलते ही, आइए सावन झूम के नेखन तीन नेखन जीवन तक के, और लता मंगेशकर पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, लाइरिक से आनंद बख्शी, धर्मेंद्र आशा परेक, अरुणा ईरानी ने इसमें काम किया है। हम आपको सुनाते हैं नेखन तीन नेखन जस्तक का एक बहुत ही पुराना गाना है,

जी हाँ दोस्तों, आया सावन झूम के, आया सावन झूम के, मूवी निकलती निकल सस्त का, लता मंगेशकर पद्मा से मोहम्मद रफी का आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, लायरिक्स आनंद बख्शी। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, जाने कैसे कब कहाँ, मूवी शक्ति, फिल्म शक्ति से गाना मैंने निकाला है, नेक दिन ट्विन तख्त का है, सिंगर है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है एर दे बर्मन, जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी और स्मिता पटेल ने काम किया है। चलो मिलके सुनते हैं, आपको भी सुना

जी हाँ दोस्तों, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते ही एक बार फिर से हम याद दिलाते हैं कि द्वंद्व दाग के आने वाला बिफे के रक्षा बंधन है। दोस्तों एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि हर एक भाई बहन का जो नाता है वो द्वंद्व दाग के आएगा बिफे के। छोटी बहना नेहंती नेहन फेफ तक के एक रक्षा बंधन का नाम आपको सुनाते हैं। फिल्म छोटी बहना नेहंती नेहन फेफ तक का है, लता मंगेशकर का आवाज़ है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं एक बार फिर से क्योंकि द्वंद्व दाग के रक्षा बंधन है, राखी का दिन है।

जी हाँ दोस्तों, भैया मेरी छोटी बहन को ना भुलाना। इस फिल्म में बलराज स्वामी ने काम किया नंदा। चलो दोस्तों, आगे ले चलते ही आज रपट जाए तो अमिताभ बच्चन और स्मिता पटेल, किशोर कुमार की आवाज़ है, आशा भोसले साथ है और नमक हलाल है निकलती त्वयन तख्त का मूवी है फिल्म। पप्पी लहरी का ये म्यूजिक है, अनजान का लाइरिक्स से। दोस्तों चलो हम सुनाते हैं आज रपट जाए तो हमें क्या।

0: आज फिसल जाए
1: जी हाँ दोस्तों, आज रपट जाए तो हमें ना बचाइयो। फिल्म नमक हलाल का ये गीत है, लेकिन दिन ट्वेन तख्त का है, किशोर कुमार और आशा भोसले का आवाज, पप्पी लहरी का म्यूजिक है, लाइरिक से अनजान। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। फिल्म मूवी कंगन नेखन तीन त्वेन सीफन तक का है, झुकी तो तेरी नैना। देखा जाए तो संजीव कुमार इसमें, संजीव कुमार माला सिन्हा इसमें काम किया है, महेंद्र कपूर और उषा खन्ना का आवाज है, म्यूजिक सदा जैसे सदा के लिए कल्याण जी आनंद जी है, और अनजान का लायरिक से हम आपके सुनाते हैं। कुछ पुराने गाने हैं लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है, महेंद्र कपूर की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, झुके जो तेरे नैना, संजीव कुमार माला सिन्हा, मेहता कपूर की आवाज और उषा खन्ना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं सवाल एक बार फिर से पूछता हूँ, क्योंकि फ्रेदा के हर एक के गाना को मैं फरमाइश समझ के सुनाने वाला हूँ। आज नहीं चल पाएगा क्योंकि वक्त नहीं है। आने वाले फ्रेदा को हर एक के जो सही जवाब पे सही जवाब को दिया है और हक बनता है गाने को मांगने के लिए, तो फ्रेदा को हम ज़रूर आपके गाने को सुनाएंगे। काफ़ी लोग हैं जो अच्छी अंतोट को दिया है, सही हल को दिया है, और फ्रेदा को हम आप सबके गाने ज़रूर सुनाएंगे। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, वत स्वर्दर दम एन हाथी, एगो हाथी से और हेवी कौन जीवा। एक अंतोर दे दिए, धीरे दे चुके अंतोर, लेकिन कह कत हम गाना ना दाए कर लो, जब हम गाना दाए कब तो हमें अंतोर बोले पड़ी, हम तरह स्पनिंग में पकड़ ली है। तो फ्रेदा तब तक के लिए हम चलते हैं, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज, रेस खन्ना सिन्हा तमन इसमें काम किया है, और मूवी है अजनबी, नेगेटिव फीलिंग सैफन तक का है, म्यूजिक है एरदे बर्मन और लायरिक से आनंद बक्सी।

जी दोस्तों, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। मूवी अजनबी नहीं कहती, वीरन से इफन तक का है दोस्तों। और चलो, हम आप लोग के सुनाने वाले हैं, अब और कुछ सुनाएंगे। एक आखिरी गाना चलेगा, उसके बाद हम न्यूज़ और बयाम लेके आएंगे आपके साथ।

जी हाँ दोस्तों, यार की खबर मिल गई मूवी राम बलराम। आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक, आनंद बख्शी का लिरिक्स। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे याद फिन दिलाते हैं आने वाली बिफे और सुख के। रक्षाबंधन है, राखी का दिन है।

0: जी हाँ दोस्तों, राखी का अनमोल धागा आ गया है। तंत्र दाख एंड फ्राई दाख के रक्षा बंधन है दोस्तों। जेबी थाम के रखिए, दिल थाम के रखिए। जितना भाई बहन है, बहन जरूर भाई के घरे आएगा या भाई बहन के घरे जाएगा। बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा दिन है। रक्षा बंधन एक ऐसा बंधन है कि बहुत ही अच्छा भाई बहन का नाता सदा बने रहे और ऐसे ही बनना चाहिए। भाई और बहन का नाता है दोस्तों। याद दिलाता हूँ फिर से, भूल मत जाना, दोष मत देना कि अनिल सार्जु ने याद नहीं दिया था। मैंने आपको याद दिला दिया है। द्वंद्व दाख इन फ्रैदाख बहुत मई दिन है और अच्छा बंधन का दिन है। तब तक के लिए हम चलते हैं, देखा जाए कहाँ चलेंगे। हाँ, यहाँ चलेंगे, मिल के सुनते हैं।
1: देखने वालों की आंखें फोड़ने का इंतजाम करते
2: हैं। ये क्या कर रहे हो?
1: फूलों की डाली में छिप रहा हूँ।

जी हाँ दोस्तों, मान जाइए मूवी हिम्मत, पद्मश्री मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाज, जितेंद्र मुमताज का ये इसमें रोल था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं एक बार फिर से मूवी संजय नेकनदीन नेकनन शस्त्र का साजन। हाँ, साजन है नेकनदीन नेकनन शस्त्र का, लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लाइरिक्स है, मनोज कुमार और आशा परेख इसमें काम किया है। आप सब भूल मत जाना कि आप सब चुने थे एफ अग्री लव द लव फॉर हिंदुस्तानी रीति, उसे आप सब चुने दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, मूवी साजन 1969 रेशम की डोरी हो, देखा जाए लता मंगेशकर और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और लिरिक्स आनंद बख्शी, काम किया मनोज कुमार और आशा परेख ने। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते हैं पूछो तो कोई मुझसे, आई आप आए बाहर आए, राजेंद्र कुमार और साधना साधना। ठीक है दोस्तों, देखा जाए और पूछे तो कोई मुझसे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी का लाइरिक से। नेकन तीन एन सेफन तक का ये फिल्म है और गाना भी।

पूछे जो कोही मुझसे जितेंद्र रजत कुमार और शाहधना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ आनंद बख्शी का लायरिक्स और आइए आप आइए तो बाहर आइए नहीं कहते एन जीफन तक का है दोस्तों। चलो हम आप लोग के लिए चलते हैं कुछ पुराने गाने में जो शायद आप लोग अभी नहीं सुना है। आन मिलो सजना नहीं कंतीन ज़ैफ़न तक का है लता मंगेशकर पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी।

जी हाँ दोस्तों, आनंद मिलो सजना निकट दिन ज़ईफ़न तक का है जो भी आपने सुना है दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग को ले चलते हैं, देखा जाए इंतकाम, इंतकाम मूवी इंतकाम निकट दिन निकट सस्त का। और सॉन्ग से हमें तुम्हारे लिए लता मंगेशकर, पद्मश्री, मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र किशन, इसका जो लाइरिक से लिखा गया है वो राजेंद्र कृष्ण है। म्यूजिक आप जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल है दोस्तों। मिल के सुनते हैं।

जी दोस्तों, इंतकाम 1969 का है। हम तुम्हारे लिए लता मंगेशकर, पद्माश्री, मोहम्मद रफ़ी, राजेंद्र कृष्णा का ये लायरिक्स है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये म्यूज़िक, संजय खान और साधना इसमें काम किया है। दोस्तों चलो, हम आपके बताना चाहते ही 20 मिनट और बचा है हमारा तुम्हारा साथ। फिर मिलेंगे हम फ्राइडे को, अभी हम रहेंगे क्योंकि अभी 2-3 गाने हम आपको और सुनाएंगे, उसके बाद न्यूज़ चलेगा, कुछ रिक्लाम हो, उसके बाद हम विदाई ज़रूर आप सुनेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं मूवी दर्द, निकनतीन एनम तख्त का म्यूज़िक, कयामत कयाम जो म्यूज़िक को बजाया है और लायापुरी का लायरिक्स से दोस्तों लता मंगेशकर का आवाज़ हम आपके सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। चलो दोस्तों, हम एक आखिरी गाना आपके लिए पेश करता हूँ। दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, लता मंगेशकर की आवाज है। देखा जाए, आप सुनेंगे, उसके बाद हम न्यूज़ प्याम न्यूज़ और रखड़ाम की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम विदाई जरूर लेंगे।

0: जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। इफाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.ifaunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे लाचारे तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हो या कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहां से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका सेवक गंगा और कुछ घड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। चलिए, हमने गीत रखे हैं रफ़ी साहब और लता जी की। रफ़ी साहब और लता जी की जी रखे हैं और वो दोनों किस तरह से लड़ रहे हैं, आपने कभी सुने हैं कि लता जी और रफ़ी साहब दोनों लड़ते कैसे हैं? तो चलिए हम आपको सुनाते हैं, इस तरह से वो लड़ते हैं।
1: चल शौक दीदार है

0: ना करो
1: यू शट अप
0: यू शट अप
1: यू शट अप
0: यू शट अप
1: यू शट अप बीवी ये अपना रास्ता चलो
0: यू ना तड़पाओ आशिक को देखो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: उसने तो तार रख दिया। जी हाँ, हमने शुरू में कहा था लता जी, लेकिन नहीं आशा जी, रफ़ी साहब आशा जी की ये लड़ाई हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्लेयर में। हमने एक गीत रखे हैं और वो गीत जाना पहचाना गीत है, अलका याग्निक की लाइफ। अलका याग्निक की लाइफ प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे इस तरह से, अलका याग्निक जी लाइफ।

वर्ल्ड फिल्म थिएटर यानी कांग्रेस का वह उन दिनों नाम था 2001 का यह लाइव कार्यक्रम अलका याग्निक जी की हम आपको सुनाएं।

साथ दी है लता जी रफी साहब के साथ, फिल्म ताजमहल में से निकाले हैं रोशन के साथ पर आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बस चलो सुनते हैं आशा जी। आशा जी बस अब बच के कहाँ जाओगे, फिल्म यकीन में से शंकर जय किशन के साथ है। फिल्म यकीन है निगति निघ्न शस्त्र का 1969 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

बच के कहाँ जाओगे आशा जी की आवाज में आपको हम सुनाए हैं शंकर जय किशन के साज पर। आजकल तो सिर्फ ऐप आता है और कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ख़त का ज़माना ही चला गया। ख़त सिर्फ ब्लास्टिंग कंट्रोल का आता है या सिकोफोन्स का या कोई इंस्टांसी सा, लेकिन परिवार का ख़त बहुत कम आता है। सब कुछ तो ईमेल से होता है, ऐप से होता है, टेलीफोन से होता है। क्या ज़माना आ गया। चलो हम आपको ख़त के बात करते हैं प्यार में।

अलका याग्निक जी की लाइफ पुरखरामा विरोध फोरम त्यात्र यानी कांग्रेस का वो उन दिनों ट्विटर से इनका हमने निकाल कर आपको सुनाए। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, एवरग्रीन किशोर कुमार कह रहा है अपने साथी से कि क्या किया जाए, चलो दरिया में डूब जाए, कूद जाए, मर जाए या तैर करें, चलो सुनते हैं इन्हीं से, क्योंकि मैं तो भूल गया कि इन लोगों ने गायें किया है। बस मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद आप भी सुनते होंगे और आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, डूबने की बात, मरने की बात या तैरने की बात है।

एक हो जाए हम, ये तो नदी में डूबने के बाद नहीं की है, लेकिन एक हो जाने की बात की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, फिल्म कर्ज तो आपने देखे ही होंगे। जी हाँ, चलिए कर्ज में से निकाल रहे हैं

उरित नारायण जी और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

ओ मेरे प्यार हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना दुड़म बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिया है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है उन्होंने उन लोगों ने फैसला कि चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है,

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यारी मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर, ये भी है एक

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

0: आ, क्या बात है, राहत फतेह अली खान और सुसाना मिलके आपको सुनाए
1: हैं बाय फाहोल हिंदुस्तानी रेडियो एंड बेल मिट अफडेलिंग सेल्स टेलीफोन नंबर 070 365 22 47.

से दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था, रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सैफन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति ए न सैफ तक का ये गीत है, चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत, हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं, आप सुनोगे मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन से इवन तक का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा, करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 450 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिए हैं।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगत ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं। बहुत सारी सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त। जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैथ मुकेश के बाद एक बार फिर मैथ मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

मेहदी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुए का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरे है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिद्धार्थ शास्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निकली 75 तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया, पर चलाया गया सूरीनाम देश में नहीं 1975 तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है 1983 साल में, 1983 साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटर में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 टेटर में देखे हैं, उससे पहले 1983 साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो FM इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने इंतफ़ाई फिर सही फिर

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकली फैफ से का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आरती बर्मन के साथ पर रफी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नेक तीन फिर सैफ तक 1974 का ये गीत, इस तरह से एवरग्रीन किशोर कुमार।

अपनी तमन्ना है, अपनी तमन्ना है कितनी छोटी, दो हाथ कपड़ा

0: मेरी बुलबुल जी हाँ पैसा मिलेगा एवरग्रीन किशोर कुमार नई कितनी फिर से इफ्तिताह का ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर
1: de beste Bollywood hits van toen en nu bij Vahon Hindustani Radio.

अफ्रीका हैप्पी स्टेशन फाह हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दोस्तों, तेरा नाम का दीवाना, तेरा नाम का दीवाना क्या ढूंढते हैं, फिल्म सूरज और चंदा का सॉन्ग है, आप खुद सुनिए राफी साहब की आवाज़ में।

0: राजीव कुमार का फिल्म सूरज और चंदा का सॉन्ग अभी आपने सुना। संजीव कुमार जिसे हेमा मालिनी से प्यार था, दोस्तों संजीव कुमार हेमा मालिनी के बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी संजीव कुमार को नहीं चाहते थे। तो इसी बात के कारण संजीव कुमार ने फिर कसम खा ली कि वो कभी शादी नहीं करेगा और बिन शादी शुदा आदमी का मृत्यु भी हो गया, कभी नहीं शादी किया। फिल्म जी हाँ दोस्तों, फिल्म जो फिल्म का जो सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हुई है, अलका याग्निक का गीत है जो सोनू निगम के साथ गाया है, पंछी नदिया पवन के झुंडे, हम सब मिलकर सुनेंगे।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू।

की बार जो सॉन्ग मैंने तैयार करके रखा है दोस्तों, सोनू निगम का गीत है। सोनू निगम एक गायक जो गसल भजन राफी साहब का गीत कितना बनाया, कई एल्बम भी तैयार किया वगैरह वगैरह। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि सोनू निगम का को पद्मश्री का पद्मी मिला, जो मैं आपसे कहूँगा पद्मश्री सोनू निगम के आवाज़ में आप सुनेंगे मैं अगर कहूँ।

दोस्ती दोस्ती कमाल की होती है, दोस्ती कमाल की होती है, जिसमें वजन तो बहुत होता है, जिसमें वजन तो बहुत होता है लेकिन बोझ बिल्कुल नहीं। और वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त तो हम जीत नहीं सकते, वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं।

वाह वाह, क्या सॉन्ग आपने सुना दोस्तों। श्रिया घोषाल के मीठी आवाज में अभी ये गीत चला। फिल्म जीत का गीत मैं तैयार करके रखा हूँ। फिल्म जीत में सोनी देओल करिश्मा के साथ काम किया। जब मैं सोनी देओल का नाम लिया दोस्तों, तो आपको मानना चाहिए कि सोनी देओल तीन लड़कियों के साथ खेल कूद कर और चला गया। पहला था अमृता सिंह, फिल्म बेताब में ये दोनों का प्यार हुआ, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर भी सोनू ने पीठ घुमाकर और अमृता सिंह को छोड़कर चला गया। उसके बाद फिल्म के दुनिया में या फिल्म के मैदान पर प्यार मोहब्बत हुआ डिंपल कपाडिया से। और डिंपल तो उनका शादी हो गया था राजेश खन्ना से। फिर भी ये दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत था और आगे चलकर सोनू देओल डिंपल को भी पीठ घुमाकर और चला गया। और तीसरा फिल्म दामिनी के बात है, मीनाक्षी से शास्त्री, उससे बहुत प्यार था, दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन सोनू देओल शादीशुदा था और एक दो तीन साल के बाद मीनाक्षी को भी पीठ उठ घुमा कर और सोनू ने चला गया। लेकिन इस फिल्म में करिश्मा के साथ काम किया है सोनू देओल। और आप जानते हैं सोनू देओल जो है वो धर्मेंद्र का बेटा है, और धर्मेंद्र तो सिर्फ हेमा मालिनी के साथ खेल कूद किया और एक दो लड़कियों के साथ। तो लोग कहते हैं कि बास के जड़ में तो सिर्फ बास ही पैदा होता है।

सोनू निगल की कहानी मैंने आपसे भी बताया दोस्तों, लेकिन उसका पिता वो ही किसी से कम नहीं था, धर्मेंद्र दोस्तों, टॉप एक्टर उन दिनों का। फिल्म आया सावन झुमके में, इस फिल्म में जो निखिल निखिल शस्त्रक में रिलीज हुआ, काम किया और वो भी आशा पर एक के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक है और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में आप सुनेंगे ओ माजी चल, ओ माजी चल।

दोस्तों शाहरुख खान, अब जब मैं शाहरुख खान का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे कि ये एक बड़ा एक्टर है और यूही चावला के साथ काम किया। शिव हरी फिल्म का नाम है और नहीं फिल्म का नाम है डर, डर फिल्म का नाम है। और उदित नारायण, वो भी उन्हें भी पद्मश्री का पद मिला है दोस्तों। पद्मश्री उदित नारायण के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, जादू तेरी नज़र।

जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत बहुत बड़ा काम की चीज है। तो घड़ी को देखा जाए तो 5:30 बज चुका है, मंगलवार की शाम के प्रोग्राम है। अभी आप लोग राजा द्वारकन से प्रोग्राम को सुना है। यहाँ से आधा घंटा कुछ मिली जुली गीत 6 बजे अभी आप लोग को हम देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। याद रहना।

और मोहब्बतें बहुत बड़ा काम की चीज है। तो आप लोग को बता दी दोस्तों, आने वाला धोंदर दाख को हम सब शुरुआत करेंगे लाइफ करोके जोन रेडियो फाहोन करोके ग्रुप यहाँ पर, और शाम को करीब 7 बजे हम सब शुरुआत करेंगे। यानी कि पहला बार है तो हम सबके कुछ टेक्निश काम भी करना पड़ेगा यारो, और आप लोग जानते हैं टेक्निश काम में कभी कभी गड़बड़ी जरूर होता है। वैसे दौर ऑफ खुद फॉर ब्राइट, और हमारा प्रोग्राम में भाग लेने वाला है हमारा जो यानी कि कोच है, बड़े भैया कोच जो भैया गंगा जी है। तो गंगा जी कोच करेगा, साथ साथ भैया द्वारका है, राजा द्वारका रहेगा, संता रहेगा, हम रहेंगे, और ऐसे हम सबका प्रोग्राम रविवार को यानी कि नहीं रविवार को दौंडा डाक को हम सब अपना करो कर प्रोग्राम को चलाएंगे। दिस आप लोग याद रखना कि हम लोग का लाइफ कारखोख ग्रुप जोन फाहुन का है, हम सब लाइफ रहेंगे। हमारे यारो और कुछ मिली गुली जीत आप लोग को आधा घंटा सुनाएंगे, उसके बाद में हम सुरिनामी देश के ओर हम बढ़ जाएंगे।

दीवाना हुआ पागल नॉक स्टेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

सलमान ए रानी मुखर्जी। इन क्यूगनहॉफ

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांस में हम चलते हैं गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज से परहित सॉन्ग, मैं से मीना से नशा की डरील कैनडी से बैल है।

और आप किया जाने से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

तो दोस्तों हम चलते हैं रेकलाम के ओर। रेकलाम के बाद में अभी हम देश और विदेश की समाचार लेकर आ जाएंगे।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों, हर हफ्ता की तरह आज भी हम आ गया है रेडियो उफाहुन में, और आज भी आप लोग को हम पूरा पूरा सूरीनाम से लेकर और अन्य देशों की सफर को कराएंगे, और करा कर ये घंटा का न्यूज आप लोग को हम सुनाएंगे। हमारे प्यारे प्यारे मौसी मौसा आजा नानी, सूरीनाम में भैया देखो का भइल है, आदमी एक मिला भैया चढ़ल है नरियर के पेड़ पे। तो बोली जॉनी गैल हुई नरियर के पानी पिए ना मामी, एगो भैया रहा जुंकी, तो ई पेड़ में से फुरुकतू रोकतू तूर के और जाए के बेचत रहा, वही से अपन मलिया कीनत रहा, मलिया कीनत रहा जाने फूके वाला तो। और काम बोले है सुनो इफी नो इफी करे वाला भैया जंकी रहा, बताए गए है ब्रेन हार्ट स्ट्रांड के बात है, और सोमवार के आदमी पेड़ पे चढ़ल है, तो पेड़ पर से गिरल है भैया, आदमी गिरल है और गिरल है एगो स्केटिंग पे गिरल है भैया। हाँ मौसी एगो स्केटिंग पे गिरल है मुखलक है, और स्केटिंग वहाँ पे गिरल है और आदमिया मर गए हैं, मैं ब्लैक भैल है नानी, ब्लैक भैल है जैसे बतावे हैं, बकेंद दृक्ष फसलाफ्द एंड फरकोख्त फ्रिक्तन इन द बूर्थ, और बतावे हैं सिपाही जो गैल है तो बोले मुखलक है, ई बोले है पेड़वे पीकर हार्त रुक गया रहा, ओम द स्वार स्वार ओफर दूसिस दूसिस, मतलब कि दृक्षवा बहुत हेवी वाले रहा, अब पेड़वा चढ़ल हुए पकर हरतवा रुक गए, तो गिर के दोस्तों तो सब सोचे गिरे पे मरल है, लेकिन वो गिरे पे ना मरल है, बोले ऊपरे मर हो गए। या एक बारे में बतावे हैं इनकल आर्टल घी बार फरवोडिंग ओप इट लिखा फास्ट हेड फरमूदन बसता दिस एन पी एन पी इन द बूम आल्स मोगलक आल्स गफोलक फॉन एन ओवरडोसी ओडोसिस एन हार्टस्टिलस्टैंड क्रीक एन फरफोलकस नार बनीन फील। तो अब देखो भैया हम नहीं जानी क्या निधि कौन सी भैया, दो तरह से बन गयाना से का बोले स्मोकल करी से सरनाम में, ई कौनी कौन दो द्रेसी भैया कायनी है कि कौन सी है, दो तरह सभन सभन काम बोले है एक स्मोकल करी से भैया सूरीनाम से गयाना से, तो बताए गए है त्रक रुक में लदान है, ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है भैया, आप करवाने में हम बताए ये कौन ची है, ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है शेर क्राख्त एसनेल वर्कन द खेमिक स्टॉफ इन द एक्सट्रीम गिफ्टक एयर फॉर मेंशन एंड दीरन हर ब्लॉकेड आदमहालिंग फॉर द सेल एंड वार्डोरे लेखाम खेस चीज स्टॉफ मेर कान खबर इकन, इतना खफार चीज सबन ओके गयाना से हबड़ा करी से, और एक के सब का करे से सोना खोजे भैया, और यही सब चीजों सब मक्का फा मक्का बिगी सो, यहां उतरा मछली मर गए हैं, इंडस्ट्री बोले vinden het woord gebruikt in metaal en chemische industrie, bijvoorbeeld voor het winnen van goud. Obole, het woord vrij bij de verbranding van kunststoffen zoals PVC, jereet, hesabtje, jon, mille, bhai. To hem betaalde li, tadi zeker baren, hem khoje li, kaunchi hai. Hemme to malum na raha, ma bohur khafar chij hai. To ekke Guyana se saban smokkel karke lai se Suriname me. Black bar hai, sona khoje ke. Atulun jane, ehi sabtje, jon, polisi biro, ma se container chori bhail hai. Aaj tak pata na milel kahan gail hai. तो अब इके युवा गयाना से स्मोकल भाईल और गयाना में दुई गो भैया तुरक लात के चिजुआ अब जातरा पारा मारी बो तो लोन जाने हो एक जगह का नाम बा चिजुआ हबड़ा भले ब्रंच साइट में भैया तुरक भाई ब्रंच साइट हुआ पे सबन दुई टन फर्मुडलक खीमिकाल ये मुआसबन पकड़ी से और बोले है ब्रंच साइट में तुल जाने हुआ कोरोनी के हुआ पे जाने सबको ये निकेरी जाए आवे हैं तो जे के उस सब मांगे रुकावे भैया लेख दिमाग सिया सीताके हैं और एनक रास्ता है जो गयाना से और कोरोनी से परमारी वो जा हैं अरे मतलब कि निकेरी से जिस गयाना से निकेरी निकेरी से कोरोनी कोरोनी से सरमक्का सरमक्का से तो फिर शहर चल जाइयो तो ओके हुआ कोरोनी के ब्रंच साइड पे रुकाई से और हुआ पे ट्वी टन सबन पाई से मटेरियल ऑन द स्केप बोले और बोले द पार्टी वेट में ट्वी ट्रक्स फरफूर्ड एंड सो फन गयाना ऑफ इलीगल वे से सुरीनाम से इन बिन खबरा भाई तो ट्रक हुआ कैसे आए गयाना तो भैया तो बोट उठ पे आई हुई फिर लदान हुई और बताए गए हैगा द लादन से खमाक फन आन मेर स्टेकर इन निकेरी में एगो स्टेकर सबन बनाए रहा हुए पे सबन चीजवा लादे रहा फन दार है सो वेट मटेरियल ऊपर वे फेर दे सेल फॉर फूड और बोले तो द ट्रक्स बेर कंट्रोल पास फन ब्र तक निकेरी से चीज हबड़ा हुई गए है तो ब्र इनसाइड पे जिसको तू नारद भैया ती मलिया हबड़ा हो जात तो निकेरी के अनमेन सिपाही हुआ सोना पाई से कि केरी में का हुए हैं और बोले इनफॉर्मेंट इस योग बारे में तीन मिला पकड़ान है जो ट्रांसपोर्ट करता चीज हुआ भाई रवैया बोले ना ऑन द स्केपिंग साउस एंड आंख कीफन की बोले हैगा लदिंग वॉस अप ऑन द सुख हुएगा और बोले प्रोडक्ट भी ऑन द सुख हुए कि कैसे है तो एक बारे में बोले और दई लखित होगा बोले ओ को ऑन द सुख वार है मटेरियल परसीज फंदान एस क्यू कहां से आयल है ओपिसवन खोजे है हमारे मौसी तो ये बात है सुरीनाम के हमारे जनता हमारा सनाम किसी पाई रोदल इस पे भाई रोदल इस पे ना सब भैया इतना बनमासी होवे इसको उतुलन करे हुआ भैया कि परासी में से क्वेक क्वेक चोरी हुई गए अब देख के कुछ सिपाही भीन पकड़ान है मौसी बहुत बेजती के बात है हमारे सुरीनाम के स्कूतु के हमारे सुरीनाम के स्कूतु के बड़ी बेजती के बात है ना सबके बोली लामा बड़ा ढेर हो गए भैया एगो तो बोली एगो रोता आपल हो सके मार बोलेगा ऐसे मेयर रोता आपल हो गए भैया तो यहाँ बतावे है कि ट्रॉली जाने को जो भैया दुई गो ट्रॉली फॉल भैया गांजा भर के और एगो सिपाही भैया सिपाही 40 किलो भैया गांजा एगो कॉफर बाग में लाद के एगो बीस में ट्रॉली में अपू यात्रा पारा मारी बो वही के कोली हुए ढल्ले इसको उतुए के पकड़ी से वही ब्रेनजाइट पे भैया जहां पे सबन पुलिस पोस्टवा है वेस्टर्न फांसरी नाम निकेरी के हुकुआ पे द पुलिस वेट सेड एखन कोली खास आन कहोदन ना दैट इन अ कॉफर बाग फांस ऑल टू ट्वी ट्रॉलीज में इन टू 40 किलो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहा हमारी जनता तो हमारा देश बड़ा ज्यादा भैया तो हमारा मनोरथ जो है मिनिस्टर फॉर यूसिशन पॉलिसी बोले नो टेस्ट मी बाकी ओ कसी पहिए नहीं के टेस्ट करे और भैया हाथ मैल के रह जात होई मनोरथ कुछ कर ना पावे है हेड हाथ ओमेगो अख्तन दर तक के यार के सिपाही है ट्वेडा क्लास के बोलेगा दी इस वर्क स्टेल ऑफ ए पॉलिसी ब्यूरो फॉर ग्रोनिंगन ओ ग्रोनिंगन के सिपाही रा भैया सर मक्का के हां
1: Sarmakka Groningen Kesipahira Bhai. Vernomen wordt de politieman Somarke Nikerise Koroni Gail He. En hoe was hebben ook een pakkalee ze. 40 kilo ganja se aur apan trolim dhalle rakhe jaise koi halal ta ja vakansi se ja bhaiya kapda latta leke dui troli koffer baak mein dhalle raha api bhaiya ke narcotic brigad pakad ke le gaye hai drug sak ke bare mein baki bhai hum ka boli hamara president jo desh ke hai aur wo hai President Simon to apre bhaiya badka badka lutera jon hamara desh ke chori karke aur hamara cask reserves jon don kari se oke khrasid kare bhaiya oke bachave hai choran ke abe dekho hudrat ke bhine le aave to ye chota chota sipahi du istri pe ke hai u kaun khet ke mulli hai president ye muta khuye formel sein man to hi podium pe bole rehle ki चाहे हमार आदमी चाहे जेकर आदमी है बोले जे तू स्ट्राफ वाला फेट करिए द मुझे बेला ओएम खान बोले हम तो के लीवर करब ओएम के अपरे गैल हैगा तरक के छोड़ाई से और इतना सिपाही लोन हैगा जो इधर उधर बनमासी करे है और पकड़ा है हमारे जनता तम बोली अबे हम मनोरथ के ना छोड़ो मनोरथ भैया तू का करे है अब भैया हुआ के अंदर नीमर जो सूरीनाम में है अब रात के ना सूद पावे है नानी इतना लुटेरा देशवा में होई गए हैं जहे देखियो रूफ होवे ई होवे ऊ होवे तो ऐसे वांछित है 3 और 4 बजे सवेरे के बाद है हमारा आनी शनिचर और अतवार ऑगस्टस के मांथ है एक घर में एक अनीमर बहुत मीठा मीठा सपना देखत रहा मार्टिन लूथर किंग वेक में और भैया ओमा जाई के 4 गो क्रिमिनल घुसल है पिस्तौल ले के भाई और ई जो काबुल अंदर नहीं मर रहा है बतावे है एगो फिर फेफ तक यार के आदमी है सेकी के नाम है और देखे प्रोसेलिंग ओकर घर में मास्कर पहिर पहिर लुटेड़ा बा और एक से पूछे एकर मुंह पे बिगी से एगो कपड़ा एंड ओवर फ्रॉम प्लाट्स एंड दुक ओवर एंड होफ और ओकर हाथ सबन टायर व्रप से बांध दी से और बांध के पूछे पैसा कहां है और ई भैया काबुल अंदर नहीं मर जो रहा उ ना मांगे बतावे वेखर करे पैसा बतावे के जुन उलकवाए रहा मैं इतना मार खाई से रमिया की एक एक कबूले के परगे की पैसा कहां लुकवेली है मौसी तो ई मार ओके मारी से भैया कि इतना क्लाक करे बोलो कर दी भर पिरा है हमारे नानी और बोले हम पैसा प्लेटफॉर्म में लुकवेली ना फ्लीरिंग पे लुकवेली भैया बोले फ्लीरिंग पे पैसा लुकवेली कोयली बोले जा ले ले अमा हम में अपना मार नी खनन त्विन तक दैजन अमेरिकान से डॉलर भाई जो ये रमिया प्लाफोन पे लुकवाए रहा बोले दारनास मार्कतन से 4,000 सूरीनाम से डॉलर जो रुकर जेबी में रहा ओ ले ले से मोबाइल टेलीफोन लेके और सब रूफर पेल भागल भैया होते इनके सिपाही अब का करे है गैल है 4 गो के खोजे कब में आशा पाएगा कब में आशा पाई भैया तू जाने है जो चला गया बस उसे तुम भूल जा ऐसे बतिया है तो अंदर नहीं मर लोन भैया इतना पैसा काहे धरे है कि अंदर बंक पे उस के सीकर है जैसे ना है भाई कि हम में डॉलरवा काम लगी तो हम जाए के डॉलरवा फिर ले सकेला हमारी भौजी तो ये बात है हमारी जनता तो यहां पे भी आप लोग को हम बताएंगे और आगे कैसे है ए बैंक सूरीनाम के का करे भैया उस सब हुआ के रखेरिंग मांगे हैं कि जितना आदमी नीदरलैंड्स हैगा जो पैसा हुआ धरी से उस सब आदमी के प्रॉब्लम में डाले भैया अब अभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या होता है सूरीनाम देश में। तो जोन जोन आदमी सूरीनाम में पैसा धरे है उ सबके एगो बड़का प्रॉब्लम है भाई। अभी आप लोग को हम इसका न्यूज के बारे में बताएंगे कि रखे रे वहाँ पर कौन कौन वहाँ पर काम को करना चाहते हैं कि नीदरलैंड्स के जे के वहाँ बैंक है दस मूल खान माँ का मिथुन खेल्थ मैन से और सबके रिकनिंग चाहेगा का बोले कि ऑफहेफ करके नीदरलैंड्स में सूरीनाम से बैंक रिकनिंग क्रेखन ऊ है अने फनाव 2007 में स्ट्रेंगर रीखल भाई। तो अगर आपको सूरीनाम देश में पैसा वहाँ बैंक पे है तो हैब यूली अनमेखा खरोत प्रॉब्लम आज देट अवत की लेस में से बोले नीदरलैंड्स और यूरोपिया के आदमी के जितना बैंक रिकनिंग सरनाम में बा 11 तारीख जनवरी से हैब से माकंत क्रेक में न्यू एयू बैंक रिकल्स नवा यूरोपी से रिकल्स रब के आयल है बोले दर बतीक नीड दैट योर रिकनिंग ऑटोमेटिक वर्ड कसलोटन ऑफ दैट इट फॉरबोडन वर्ड ऑफ खेल बेसिस नाम से बैंक ते हैबन द फ्रांडरिंग राग फॉर ऑल द मनीर वारो बैंकन बैठे द यूरोपीय यूनी हैं डिस्टर्न अन क्लांटे नीदरलैंड मोहन अनबीडन कि दूसरा रकम उसे करी तो लोन जानो ढेर अनबी भैया यहाँ बालासिंग ना मांगे भरे तो जाइ के हुआ बैंक खोल के पैसों हुआ करो रकम धरे बां तब यूरोपा मुइलक करे हैं तो बोले सूरीनाम से बैंकन फॉलन अंडर द रिकल्स फॉर लंदन बैठे यूरोपा सूरीनाम खेल्ट binnen deze regelgeving als een zogenaamd derde land. 2027 met januari ze bollega voor op al jabbers aanscherp kari banken uit zeker landen diensten in Nederland mogen aanbieden bollen de Nederlandse regels vloeien vooruit de Europese richtlijnen. De diensten zoals betaal- en spaarrekening, leningen en andere producten kan een buitenlandse bank in bepaalde gevallen een vergunning en bijkantoor in Nederland nodig hebben. De verplichtingen liggen daarom in de eerste plaats bij de bank en niet bij de Nederlandse klant. Een Surinaamse rekening aanhouden wordt dus niet eens strafbaar. तो ये बात है बड़ी बड़ी बात है दिस बिल अलमाल आदमी लोन अपन पैसा जाए जाए आदमी के ताशिशाल दिन में काम उम ना करे भैया और जाए जाए सूरीनाम के बैंक में धल्ले रहे और यहाँ के रखीरिंग ना जान पावे तू कितना पैसा बैंक में धल्ले है और आदमी खा शिशाल साका के पैसा और कितना आदमी वहाँ पर ढेर ढेर पैसा धरी से और बला सिंह यहाँ ना भरे एंड विल दे नीदरलैंड यूरोपी से इस सब चीज के बारे में अब जब जान जाए भैया तो तेवी का से तेवी का समझे ना है भैया स्वागरी तेवी का जाने तो तोरे खवेरकन द क्रक से मारेगा तू जाने नीदरलैंड कौन ची भैया उजे तोर उंगरी पकड़ेगा तो तोके जितना नहीं मके रोवा सब गिन ढाड़ीगा निकिया ढाड़ी इसी नाम है ना भाई जे तोके हमारी इकनिंग है और सब जान जाए तोके इकनिंग है और तू दौड़ ना दे ले हैप्पी एंड मी का करो तो प्रॉब्लम वी ना दे दा तुम अ न्यू इकनिंग ओपन कान इन अंदर पोसिशन तरह कोमन अ बलांगरे uitstring wanneer een klant volledig uit eigen beweging naar Surinaamse bank benadert binnen. Wil een woonplaats belangrijker zijn dan Nederlandse paspoort? Ha. Ook de woonplaats maakt veel verschil. Ego Nederlander die daadwerkelijk Paramaribo met jou rehehe bank bankiert valt niet alleen vanwege zijn Nederlandse paspoort onder dezelfde regels als iemand die in Amsterdam woont. Metlep ki tu huwa rehe baat het ook een Nederlandse paspoort ba. Tu hier na eens geschreven baat het huwa rehe dan is het niks aan de hand mensen. Maar je tu huwa na rehe of tu rehe Amsterdam met paisa huwa dhalle baat dan heb je een probleem. De Europese regels richten zich op dienstverlenging aan klanten die zich binnen de Europese Unie bevinden of daar gevestigd zijn. Dus toen je Europa maar te taptoren gaat geldig hè, maar toch een Nederlandse paspoort hè, uit de Suriname mee tap toch een paar jaar daarheen, daar is niks aan de hand. Voor de Surinaamse banken kan dat betekenen dat zij Nederlandse woonadressen scherper gaan controleren, extra vragen stellen aan nieuwe klanten of besluiten bepaalde producten niet langer actief in Nederland aan te bieden. Bolle daarom daarom 11 tarik januari 2027 mee geen automatische sluitingsdatum is. De uiterlijke gevolgen hangen af van wanneer de rekening is geopend, waar de klant werkelijk woont en hoe de bank de klantrelatie na invoering van de nieuwe regels organiseert. तो हम बोली ये न्यूज़ तो चाहिए हमें तो लोग के बता दो एक बार बहु देखे हूँ आप पैसा भैया तो तेरी जांच करियो क्या करें कलियों का चमन जब खिलता है

थोड़ा गोरा लगता है तो कभी काला लगता है तो कभी उज्जल लगता है, लेकिन लगता तो है, वो बात है हमारी जनता।

हमारे दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं। सूरीनाम के लोग और सूरीनाम के लोग और नीदरलैंड के लोग के भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि खाई कोई बनाइयो भैया चूल्हा पे या खास पे या जोंची पे अपना खाना तैयार करते हैं तो वहाँ पर बैठ कर देखना कि खाना कैसे होता है, ना कि हड़िया में तेल डाल के और सूत जाइए भाई। उस सूते वाला समय ना है, सूते वाला समय रात के रहे है नहीं दिन के। अपने एगो देचा मान लियो लेकिन ना खाई बनाइयो तब जइयो। कहा बोले है खाई बनावट में सूझ जइयो। अब ये बात हो रहा है हमारा सूरीनाम के देश के ओर हम जाए भैया। तो एक घर है फ्रांबोस वैक में, तो शनिचर अतवार के दरियन तो ऑगस्टस के मानचित हो रहा है। तो वहाँ पर मौसी तेल डाड़ के हड़िया में अपगोरे तेलवा गरमाई, इतरे में गर तेल अबे ना गरमान है और मौसी सूत गे भैया। मौसी सूत गे, मौसा के पता ना कहाँ है। अब जब मौसी जगल है भाई तो तेल जो रहा हड़िया समेत खास फोर नाइस पर से नीचे गिर गए है। जब गिरल है तब मौसी के आँखी खुलल है। पहले जब गिरल है तब मौसी के आँखी खुलल कि अरे कौन ची गिरल है। तब मौसी कांडे के कुकरू में पकड़ ली से जबरदस्त आग भाई। हाँ आग लग गए है। तो बरांतवेर के आवत आवत का और आगी सब भस्म कर दे इसे घर के भाई। जितना इन बुदल ला सब दोन फोरखस बरांतवेर बोले है, बोले इतना फर हेतन फन ओली तुन है तेज द वक्तन इन स्लापफील ऑप गेफत मोमेंट फत हेड खार फॉर माय फ्लम वन हेड फ्यू सिक्स नल अरब्रेडन ओवर सुंग द रेस्ट फ्रॉम द वूनिंग। अब पकड़ ले भैया वो आगे लग गए हैं। और बताए गए है घर वहां में एगो ईटा के घर रहा 3 मीटर बे 8 मीटर बड़का घर रहा। तब वो मैं से जे माँ इलेक्ट्रिसिटी नेट फन ABS की भी उम्र रहा बाकी घरवा ब्रांड फर्सी कर ना रहा भाई। सोचो बड़ा महंगा ओंहा उनका बोले सपना रहा है भैया तू सूद गए ले तो घर फर्सी करना है। और तू ना ख्याल कह बैर ब्रांड दे दिन से खीन पसोल को खुलक न तुले मैं से ABS एंड सूरीनाम से पुलिसी वारन इवन इंस्टर प्लस। और एक बारे में बेचारा मौसी लोग के जेकर घर जरल बड़ी दुख के बात है। हमारी जनता बहुत दुख के बात है। आप लोग के पता भैया एगो फिल्म माकर हैगा रोडनी लाइसनर और ये लाश हो गए सूरीनाम देश में भैया। हाँ सूरीनाम देश में लाश हो गए है 15 तारीख अगस्त से। और ओके सबन बहुत खोजे जेकर ऊपर सबन धरी से बोले हैगा 10,000 पैसा हम लोग तो के देबे एरो। बोले कोई बता दे कि रोदनी कहाँ है। तो सोंदाग 23 अगस्त स्टार्ट द टेलर ऑफ 9865 एरो बै एन गब्राक्ट डोर 163 डोनाची। और बोले हैत uiteindelijk schreef bedrag van inzamelingsactie van 30.000 samandari se bhaiya ki ye bata dewe ye ramiya kahan bole 30.000 euro hum lon to ke debe aur bole ukar koi batawe na family of khasak fiya ane go fund me bole humme khojo bole hega met het geld wil de familie extra mogelijkheid creëren om Rodney te vinden en meer duidelijkheid te krijgen over wat er met hem is gebeurd mensen। और ओके सब खोजे है फिल्म आकर हैगा। और बताए गए हैगा इंसामल बद्राख होकर दर तक दैजन हुई है रोटनी के बोले के फॉर इंफॉर्मेशन दे टू लेट कि रोटनी अबे जिंदा है लौट याल विल द फैमिली में लोना से प्रोफेशनल यूरिडिस बेस्टन एंड एडवोकेट एंड कोस्ट इन सूरीनाम इन दी नो साकले इन नीदरलैंड बतालन ओक अंदर uitgaan van die rechtstreeks verband houden met de vinden van Rodney kunnen uit de opbrengst worden bekostigd। बोले कोई बता दे कहां है। तो बोले हम लोग सब कॉस्ट तो के हम लोग भरब।
Of familie maakt duidelijk niet te willen afwachten en naar eigen zeggen geen enkele mogelijkheid onbenut te willen laten. Op palwaar soche ki kahaba, of verblijf van Rodney. Op het oude hega, palwaar bole hega, grondvindingspagina updates geven over de zoektocht en besteding van het inzamelijke geld. Maar ik er waarmee heb ik iets patana, hè, bhaiya. Yahan bataye gaye hega, ki itra paisa dhari se. Lekin bhai, ik er gaadi milal hai nani, ik er auto milal ego swampu me. Ego swampu me ik er auto milal hai sarmakka me bhai. सरमक्का मिलल है एकर ओतो एकदम जराई के सब भसम कर दे रहा ई रोतनी लाइसनर जो ने ट्वीन फाइव तक यार कहेगा और बोले दर बफेस्कन ब्रोनर रोंदोम है अंदरसुक अंदर गोरस पुलिसी फुरते के सब चेक करी से तो बोले हैगा अनवेशिक फन ओतो बोले किया सोरेंटो है और यह कहते हैं कि नंबर भी लिख ले कि ओ ही को ओतो हुआ जरल है और शाशी नंबर में सब क्लॉप हुए है कि रोतनी को ओतो है बोले शनिचर के 15 तारीख अगस्तस के सेन वूनिंग 15 तारीख अगस्तस गए है तब से एकर एक को स्पोर ना है कहां है और कहां ना है सूरीनाम देश के बाद बतिया ले भैया तो एकर बारे में सिपाही चार को फरदाख्त के पकड़ी से सन्ना में और बोले बन करी सेगा और बोले तरवेल अफीर द फरदाख्त अबे भगल है बोले ऑन द अनखोन फरदाख्तन बफिन सिख क्यूबांस एक्ट बारे को क्यूबा के चार मिला में से दुई परानी है क्यूबा के बोले द फीर द फरदाख्त इज रायन टी बोले एक्स पार्टनर हैगा जो हेड के सीईओ फन रुडिसा के हैगा और बोले हैगा द पुलिस हैव द verschillende huidige CEO van Rusida. तो ये क्या भैया रुसिदा कौन ची हम जाने लगो बदरई फैसरी नाम में रुसिदा लेकिन मालूम ना है ये कौन ची है रुसिदा और सूरीनाम देश के बातचीत हो रहा है बताए गए है और रुसिदा के बारे में ना लिखल है कि कौन बदरईफ की ऊपर द लीडिंग फॉर रुदिसा वो दूसर है भैया और ये दूसर चीज है तो जैसे रहेगा आप लोग को जब एक चीज के हम में 100% ना है तो हम ना बोले सीईओ फन दिशा लिखल है बोले पॉलिसी फर्स्ट कैलेंडर एड्रेस पे गई है और तरह शेयर करे है और ये सब के बोले फॉर अस नॉक बोले एगो भगल है और बोले अब लाइसनर के पता ना है ओकर एगो स्पोर्ट ना हो कहां है भाई बोले हैगा द पॉलिसी हाउथ रीकनिंग में द मिस ड्राइव en roeppersonen met informatie over zijn vermissing of zich te vermelden. Obolega Leisner is in Nederland bekend als filmproducent en is in Suriname werkzaam als directielid van Rudisa NV. De directielid hega Rudisa NV, ke bhaiya, ha, ab samajh li. Ego bedrijf hai Suriname ke film producer mange Suriname mein kaam kare hai Rudisa NV ke bare mein aur Rudisa NV ego bedrijf hai Connection Global Brands likhal hai aur bataye gaye hega यहाँ पर ये बदरईफ कौन बदरईफ है दोस्तों सूरीनाम के हुआ डायरेक्सी में ये काम करे है और ये लाश हुई गए भैया तो कैसे मिलेगा कैसे ना मिलेगा बस इंतजार ही करना। एक फिर शस्तक यार के आदमी भैया जहल में रहा 22 तारीख अगस्त में सब एक मरले पाई से तो बोले जॉनी कौन ची करी से ई फिनस तक यार के आदमी भैया 10 बरिस के एगो लड़की के जब उस लड़कुआ 60 बरिस से रहा तो 60 बरिस से 9 बरिस तक ओके मिस ब्रेक करी सेगा ई फिनस तक यार करमिया और बोले फरतोंद तेजे सेल कंट्रोल गेन टेकर फॉर लीवर मेर आर्स बोले मर गए हैं एक 21 अप्रैल फन इट लोपेंडर यार अपस्पोर्ट फॉर एरस्टक सेडन डिलेक्टन गप्लेक इन डिस्ट्रिक्ट ब्रोकोपोंडन फरमारी भूमि कलर हां और बोले आई दैट अंडरसुक इज नाउ फोर गकोमन दैट द प्लेग मदर फन मेंशन ऑन रेगुलर मैटर हिडन हैड ऑन केन ऑन डेट
bij de geslachtsdeel van een minderjarige kind, waardoor het meisje de handelingen van de man kenbaar maakte aan de moeder, die vervolgens direct aangifte kreeg als hij bij mij. Toen ik heb pakken geband kreeg, bhaiya, jahalana kalbe jahliye miyere miya ke rama naam sat hoige nani, itra paap kariyo bhaiya. Toen bole tu chala ao, bole hege openbare minister werd bij hangende onderzoek in verzekering gesteld. Een cellenhuis, sipahi me bankalera politiebureau centrum me, 22 augustus kene me marle paral he, so onzilde lichaam dat in opdracht openbare ma patana bhaiya, jaliya mo kalleik milal tu jane, isab chit ki jahal me tu jaiye kare. जहल में जहल जइयो और लड़कन फड़कन के तू मिसब्राइड कर ले बाटे तबन तो के सो मार हुआ ना छोड़े है भैया सिपाही से ज्यादा तो हुआ के जहलीवन तो के मैं सांदल कर डाले वह बदित अनफार के रे खसीन आप लोग जानो है निकेरी से फेरवा बुटिया जोन जा है गया ना तो जगहिया नाम काना वायमा भैया तो फेर बोट हबड़ा हुए गयाना से निकेरी निकेरी से गयाना जा है और भैया ओके खुद क्योर चाही हुए के तो पांच गो पिंतक खातिन सबन गईल है और काबल खुद क्योर करे की बोटिया उड़ सके मतलब कि हबड़ा हो ही सके की ना तो अब अंदर सुख बोलेगा मास्क के वेदना से उन्हों फंकल के इंस्पेक्टर इनकस्काकल और बोले हैगा पांच गो हुफ पिंतन जो रहे हैगा बोले हमार तो सब मोई रहा बतावे है मोई रहा बतावे है कानावाइवा वेरी शेरफीस के बोले है बोले कमिसारस जो नहीं का जेमस अंगुलाल बोले है फैल खैस मात्री बोले अइटफूर बोले हमार तो सब मोई रहा मार ब्लीफ अन फॉर्मूला ट्रिक कॉपलिंग नाने इन हर इंस्पेक्शन अइट बोले बतावे हर किंग ओंदन मेर ब्रांड फैल कहित रहा रूप मेलदक रहा एन अंदर मात्री ओमेत रिसिको अब ब्रांड बेपरकन ook moesten certificaten van de bemanning worden aangeleverd. En bole sab kuch mooi raha, maar bole humme usab kuch na bolis. En bole hum apan bole humar to sab mooi ta bole hum botiya chalawat rahi. Bole admi log jaye habra bole achitte me bole kagaj aaye ke gir rahe ke to ke botiya na ma ke ferwa habra kare ke gayana se nikeri. Of nee, andersom. Dan bole de gestrande passagiers her vaarboot. En hij heeft directe gevolgen voor reizigers tussen Suriname en Guyana. Probeerde daarom dispensatie te krijgen voor het afgelopen weekend. Zodat gestrande passagiers alsnog konden worden vervoerd. Er zijn mensen die daar gestrand en we willen die mensen helpen. Isabel Angula bole bhaiya. Hij wijst erop met ieder reiziger voor voldoende financiële middelen beschikt om gebruik te maken van de alternatieve vervoersmogelijkheden. Maar bole ki, bole se botia toch een namacht chalaika, bole de president commissaris, bole ik erbare mee, bole weer voorzitter om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Baki bole hem mee kuch na bole, te bole hem te sochi, hem chalai se kila botia. De boot aise thoro chale bhaiya kagach agach ho jaya, maar tu jane Suriname mein sab rekening na ho rahi kare bhai. कि हुआ आदमी फेर बोट के स्ट्रांड भइल है उ सब अपन टाइट लेके सब कुछ करे है ओके नेक्स्ट मांग के हफ्ता भर तुर बोट बुड़ल है कि उतरान है तो ये बातचीत है हमारे दोस्तों हमारे प्यारे प्यारे जनता भैया हम जाए हनीस मनोरथ के इतना चोर लुटेड़ा है बाकी भैया उसी पाई लो लड़कन के पकड़े जो ई बाइक्स चलावे है हम जाने ला ओ कमवा चाहे होवे के मैया छोट छोट लड़कन दुई गो अपन ई बाइक्स चलावे है ये मनोरथ बड़े यंग केंद्र ई बाइक्स वार्डन फ्रॉम द वे हां छोटा छोटा लड़कन के नमाक दैट क्लब मेन से दैट इज सीकर खुद मने मनोरथ मार हु से तद मैं द रूफर फ्रॉम सिंसरी नाम भैया मनोरथ
Maar de Orde van Justitie Veiligheid doet een dringend beroep op de ouders om kinderen van 8 tot 12 jaar niet met een e-bike de openbare weg op te sturen, mensen. Het is veel te gevaarlijk. Dat zeg ik ook, mensen. Daar heeft hij mijn oren. Of de minister helemaal gelijk. Extra politiecontrole regelen tijdens vakantieperiode. Bollehege aandacht, veiligheid voor de recreaties. Ja, precies. Ja, Pauli. Lekker een keer op een moeite te doen. Kelker, ja. Dat ben ik helemaal eens met meneer de minister. Ik ben kritisch, maar waar gelijk is, ga ik ook gelijk geven. पांच को भैया क्वाटा में इनफाल करी से सिपाही पांच मिला के पकड़ी से 21 augustus के पकड़ी से भैया क्वाटा में पकड़ी से नानी और गल पता मिलल है ड्रग्स पिस्तौल वापन बड़का बड़का सब मिलल है और हमारा देश का माफिया होइगे का भैया मनोरथ तेज इनफॉल से फेव verdachten met verschillende buitenlandse nationaliteiten aangehouden 4 wapens aangetroffen beslag genomen uit drugs via criminele organisatie een van hen zou in Brazilië worden gezocht vanwege ernstige criminele activiteiten. De ego Braziliaan keert op elkaar ke bankeler aan. Of Oskoutu ook een chorwaad is bij jou raad ook een vervluchter deze gaan. Ook criminele bende keraan. De pijle hamar sipahi ke chahi kaida sikhe ke. Ki choren mafia lok ke na chorai hem. Want u doen sipahiën bandra ook erbare me pin se kuch na likhele janta. Nederland koor hem jij bijna droogte naar buien iets afgenomen maatregelen langzaam afgebouwd. Bari jura raha Nederland me bhaiya ki pani yani tarkari ke nama khara si cheke aur bole dhire dhire jhurwa ab ja hai afgelopen week iets afgenomen bole effecten zoal versilting aantal plaatsen af en toe kunnen enkele maatregelen geleidelijk worden afgebouwd staat in werkelijkheid droogmonitor van Rijkswaterstaat Kaleraha. Het herstel van de waterstand kan wel nog weken nog tot maanden duren. De gevallen neerslag ben vooral verlichting in Zeeland en de hoger gelegen delen van Nederland. Op bollehega risico raan, bollehega maar alertheid blijft geboden. Risico hierop wel groot blijft, dat komt door de nog beperkte aanvoer vanuit de rivieren in combinatie met de wind. Te bolle op maatregelen joraan bolle worden mogelijk afgebouwd kunnen worden. Wel blijft je verbod op oppompen van oppervlaktewater en grondwater of veel plasten voorlopig nog van kracht. John bolle ik aan John Saban. Deer pani Saban oppompen kare oppervlaktewater en grondwater op veel plaatsen voorlopig nog van kracht. Maar berkabar selle dosto. तो ये बात है अब वे वेल फॉरबोडन है तो हमारी जनता हम और आगे अपना प्रोग्राम को लेकर जाते हैं और आपको सुनाते हैं हाइटी में भैया हाइटी में हाँ हाइटी में भैया बहुत भगदड़ मचल है 30 आदमी मर गए हैं देर तक दौदन मरल है मेने फर्क पर क्रिसिन फॉर ब्राइडिंग इस समय पर फर्किसिंग हुई और हुआ पर भैया भगदड़ मचल है फन इंटरेस्टिंग uitbarsting van geweld. Minstens 30 admin Maral Hega, hoofd ter Port af Prins mee. Deze aanval uitgevoerd door een krachtige coalitie van bendes. Coalitieke bende kregen van plaats in een tijd waarin het lang zich voorbereidt op de eerste algemene verkiezing. In meer dan 10 jaar. Dus wat is nou verkiezing? Dus wat is gebaat mee? Op verkiezing. Hoe nog wat dagen wil. Hoe wil het ja. Bolle de bendes ongeveer 70% van de poort. A prins gebaat. Bolle ligging met uitzetting van de toewensing van de. Op bolle ondanks Amerika. Anti-bende eenheid die op termijn van 5500 leden moet tellen. Blijft het moeilijk om de orde te stellen. 1,5 miljoen mensen in het hele land geweld houdt aan ondanks internationale spanning met meer dan 3100 doden. Ruim Gyara zou het niet met je eigen autoriteit, bolle regering, bolle he, zonder zwakte en zonder uitstel worden hersteld. De abhoi ki na hoi hamari janta, lekin ye sab achha chij na hoi Guyana me. हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम के हॉलैंड के
जनता। तो हम आते हैं चुनरे चुनर के बाद में, हम आप लोग को एक गीत को सुनातेंगे और सुनाने के बाद क्या होगा, तो कौन सा गाना हम आप लोग को सुनाएं, जरा सुना जाए।

आइए आइए। आई कैसे है? हाँ हम भी जरूर निकलिया ये ऊपर के हंस पर निकलिया उस लंग से दे हम भी है सुस्ते में खा हम भी मार के बैल तो यार ये मास फ्री कर मी से परे में खराब ना करे लग बोले कि बोले नहीं बोले उसको तो आई तो देखा ले हम तो हम जा खाई को दिन हम भी फॉल कर लिया दिल्ली करिया हमारे लिए संजोआ सुना रहे अब को न्यूज भी पढ़ ली बाटी कि पानी बरसल है बाकी अबे रही स्वास्थ्य साथ

और प्यारी करके देखो ना दोस्तों, एक दो समाचार और हम आप लोग को सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा समय आ चुका है बंद करने में। तो हम चलते हैं दोस्तों सुरीनाम में भैया, इसे कोई गैल है भैया, एक गाड़ी गैल है शिकार खेले गैल है बेनलांत में, एगो इशुसु डी मैक्स के लेके और इस पे ऑटो में से ना उतरल थक गए जा तो तुम में सुतले रहा भाई, सब ऑटो में सुतले रहा और उतरे में भैया बंदूक दगल है ना, इस सब कोई के दूसर कोई इस सब के दागी से बातचीत हो रहा है बीता ग्रोन में भाई, और एक मिला तो हुआ में बैठल ओके जाए के ओकर चेहरा पे लाई लगल है और ओकर पजड़ी में भैया रेबा में लगल है, तो इस सब ओ तो और एक जंगल में घुसल रहा शिकारी यही सब के, लेकिन जो घुसल रहा ओके इस सब छोड़ के गए है और डायरेक्ट गए अनखिफ्त करके शिकन हिस में के लेके वन एक कर देही में से खून निकलता भैया तेर होक तो फन से मोन एर आन से रेक्टलक सैड फन दे रिबन कास और बोले फॉर नोमन वाटर दर तक यारख एम का में दे इशिशु दे में एक्स में दे पुलिसी संद्रे अरिफेर दे और बोले फरक्लार करे है कि ओकर फ्रेंड MG एंड ट्वे फ्रेंडन वास गान यागन हे सेलस्कप अरिफेरदे रोंड 22 uur ter hoogte van de brug van Bitagron और बताई गई है दूसर गाड़ी बोले पास भइल है, तो ई सब के तो वहां पे दागी से भैया यहां बताई गई है बोले तुन से वकर वे सख से दैट हर फ्रेंड इन द ऑटो गमोट वास करा हेड ब्लेक शॉट वंडन इन टू हेवन opgelopen बोले द फ्रॉग कोन नीट aangeven hoe de schotwonden precies worden ontstaan en evenmin door wie haar vriend was beschoten. Ik hoorde het wist op legela volgens haar zou de slachtoffer zelf met duidelijkheid te willen gaan. Een slachtoffer werd bij een academisch legel zei van oké, op het aanwege gaan. Voertuig terug in de richting van de politie voor Sandré. De man die eerder het bos was ingegaan om te jagen werd daarbij in het bos achtergelaten. To bataye gaye bhaiya ki ek dusar gaadi pass hota tha bole u sab dagi se, to hamari janta aap log ko hum yahi samachar aapko dete hai aur yahan tak tha hamara desh aur videsh ka samachar jo aap log ke liye humne suna diye hai।

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे अमीर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ फिर।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी अत दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए एक जान है हम आसमां के आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमीन पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आचम हो गया है। फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

और आज की रात क्या होगा, रात छोड़ो चलो हम लोग बम्बई का रानू देखा जाए।

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेगा।

आज हमें जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते या गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एन टी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक मुसाफिर चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग, हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों, तेरे नाम लिया और क्या किया, क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया, सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आम सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन। सौतन नहीं खंती इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है किशोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है? नवीन सरवन का म्यूजिक है।

आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैर खेन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैर खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई खती हों नई हनन जीफन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं। क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

तो आज का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मिस मैरी की ओर हम जाते हैं।

0: to enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशिया बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं, तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा तो आओ चला जाए। और वो है आजा सनम।

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएगी लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाचिके लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मेरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द भरी नच जे लता जी परमान श्री मोहम्मद रवि मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है।

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली, झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग की ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Out the heart of the millions, Mukesh. मूवी का नाम है श्रीमान सत्यवती, जिसमें राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं शायर और शायरी के मूड में तो हम हैं दोस्तों, लेकिन आपको हम क्या क्या सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, कहते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक तरह नाम रहे जुबान पर, एक तरफ नाम रहे जुबान पर, और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर, मूवी के नाम है तकदीर, और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है। परमा श्री मोहम्मद रफीर का

होगे, दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल, मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो।

0: अब दरवाजा खोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो।
1: और राम बोलो बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरी गीतों आपको हम सुनाते हैं, तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर। और ये है परमाश्री मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत, अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीने दिल हो जवां परमा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का परमा श्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

है तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते हैं और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती मतलब जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जे लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नचे लता परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो,
0: आओ प्यार करो यहां पर लिखा है। तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारों? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म के नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म मेंसे, मार इट इज हेल मोई नंबर। लात वेव दी ओक खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

की में होके सवार चली रे। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

और 100 साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि 100 साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी निगेटिव 100 एंड फिनिश का। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

तो फिर ये मुलाकात हो न हो, नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम, वो कौन थी और ये गीत जो है। दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले, तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।

हुस्ने वाले तेरा जवाब नहीं है, और हुस्ने वाले तेरा जवाब के बाद हम जाते हैं, और वो भी एक ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग आज के मूड में है, वो है और ये है फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है आपकी परिछाइयां। मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमाश्री मोहम्मद रफी, एक रोमांटिक सॉन्ग है जिस फिल्म में धर्मेंद्र काम किया है। आओ सुना जाए ये क्या है भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा गीत होगा।

और दोस्तों और मैं निगाहें तेरी चेहरे से परमान श्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। उसके बाद हम चलते हैं एक सुपर हिट ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है और वो है मायती मुकेश नाइटिंगेल लता जी का एक फिल्म है। आपको ये गीत जरूर सुनना चाहिए।

0: नैनो में क्या आने वसी फिल्म के नाम है वारंट मेंशन, दैट इज द इंग्लिश नाम, और एक हेला मोया जोंग जो आपके हम लिए चला चुका है। तो ये बात है हमारे यारो दन खाओ नाम लखनर अंदर मोये नंबर वीर, फिल्म के नाम है हांगकांग 1962 के, एक पास नोक नहीं खबर है मेंशन, एंड स्टार्ट ओ माय गॉड हसीनो को और क्यों दे दी तूने है। और इस फिल्म में जैसे देखा है तो ये फिल्म हांगकांग है, परमाचिन मोहम्मद रफी आशा जी का फिल्म है, ओम प्रकाश एक्टर किया है इस फिल्म में, काम किया है, आओ सुना जाए।
1: ओह माय गॉड।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हरी राय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझसे पहले आप सभी की सेवा की है भाई श्याम पूरन जी, उसे मैं हार्दिक से धन्यवाद कहती हूँ।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने नहीं आवाज लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, ओपनिंग सिलेक्शन तो अभी आप सुन चुके हैं और चलिए एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे राम राम भज राम राम, और ये तो सच्चे सुनने वालों राम से बड़ा है राम का नाम। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको एक सुंदर सा गीत सुनाने वाले हैं, और इसमें बहुत रस है सुनने वालों।

किस पर करे गुमान बंदे, किस पर करे गुमान। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी साहब जी आपको सुनाने वाले थे। और ये तो सच यानी सच्चाई है सुनने वालों कि हम किस पर गुमान करें। आज हम हैं, कल नहीं है, और कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और गुमान करके न कभी किसी को कुछ मिला है और न ही मिलेगा सुनने वालों। और जीवन में भी कभी कभी इतनी कठिनाइयाँ आते हैं, कभी कभी इतनी मुश्किलात आते हैं कि लोग भटक जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो लोग भी खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे यानी ऐसे करने से जो सब कुछ यानी जो प्रॉब्लम है, जो मुश्किलात है, सब कुछ हल हो जाता तो सभी कोई ऐसा ही करता। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते, सभी दुखी प्राणियों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों जीवन से न हार और जीने वाले। और जैसा मैंने अभी कहा है कि अगर हर एक मुश्किलात या जिस हालात में जितनी कठिनाइयां में आप है, अगर उसका हल यही होता कि लोग खुदकुशी कर लेते और अपने आप को हानि पहुंचाते, तो सभी को ऐसा करता। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी जिंदगी ठहरती है। तो ये जब यानी जब ये दोनों चीज़ आगे बढ़ते हैं तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों ना कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। सुनने वालों, एक और सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं, क्या मिलिए ऐसे लोगों से। और ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी इज्जत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुनने वालों, अभी अभी एक तार आया है हमारे प्रोग्राम में और माता जी ने तार किए थे और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा से बात किया और अपनी समस्या सामने लाई और उसका रिएक्शन जो थी, यानी उसकी रिएक्शन जो थी वो बहुत बढ़िया था और ये हम लोगों को एक पुश देता है, ताकत देती है कि हम लोग आगे बढ़े अपने प्रोग्राम से और अपनी ज़िंदगी में भी। और हम माता जी को हार्दिक से धन्यवाद कहते हैं। क्यों हम इस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हैं? क्योंकि उनमें, यानी उसे मुझ पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने मुझे तार किया और अपने दिल की बात कह दी। थैंक यू वेरी मच, यानी धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक गीत, यानी ये भी मुझे बेहद पसंद है। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सुनने वालों, एक पते की बात बताओ, सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली।

0: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी साहब से। एक पते की बात बताऊं, सुन मेरे हमजोली, सबसे अच्छी सबसे सुंदर बोली प्रेम की बोली। ये तो सच है सुनने वालों, अगर आप कड़वा बोली बोलेंगे तो भी आपने सुने हैं ना, वो लगते हैं जैसे एक बंदूक की गोली और उसे कुछ नहीं हासिल होगा। फ्रॉम द मूवी, यानी फ्रॉम द मूवी प्यार की कहानी से हमने ये गीत चलाए हैं। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। एक बार फिर से मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूम के।
1: नजर वो जो

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी आया सावन झूमके। इसी फिल्म से हमने पेश किए है। और किसी को बुरा कहने से और बुरा सुनने से हम लोगों को क्या हासिल होगा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले हैं।

इशारों इशारों में दिल लेने वाले फ्रॉम द मूवी कश्मीर की कली से भी आपने सुने हैं। सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल।

दीवाना मुझसा नहीं संबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत तो इसी को कहते हैं।

देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं। भी आप सुन रहे थे जी सुनने वालों, सुन रहे थे जी सुनने वालों। जी हाँ, बनारस है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पूरब से जब सूरज निकले।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, पूरब से जब सूरज निकले फ्रॉम मूवी बनारस से हमने पेश किए हैं। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तो प्यार ना कर, फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फ्रॉम द मूवी सफ़र, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: आप सुन रहे थे हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया सामने थे किनारे। सुनने वालों, मैं आप सभी को कुछ बतलाना चाहती हूँ। एक गीत जो है, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। ये गीत मेरे दिल को छू जाता है सुनने वालों। और एक कॉन्सर्ट थी साउथ प्लान में 24 तारीख दिसंबर को, और ये गीत को गाए थे वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी। बहुत खूबसूरत से उन्होंने ये गीत को गाया है, तो चलिए ये ओरिजिनल मिलकर सुनते हैं।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये पूछेगा क्या। और जैसे मैंने आप सभी को बताए थे कि 24 तारीख को एक कॉन्सर्ट थी थिएटर साउथ प्लाइन में, तो वहाँ पर उर्मिला शिवराम जी ने ये गीत को गाए थे, बहुत खूबसूरत थी। और आप सभी को भी पता होगा कि ये किसकी बेटी है, ये है राम नारायण शिवराम जी की बेटी। सजनवा बैरी हो गए हमार, द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सुनने वालों।